0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे गागी ईग नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्रामवन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे कागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरी।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामिन बेले वीमे नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्रामवन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।